भारतीय संगीत द स्वीट मेलोडियस म्यूजिक फ्रॉम इंडिया ऑन द वॉइस ऑफ द पीपल एंड योर होस्ट इज मुरली कृष्णा होप यू आर ऑल एंजॉयिंग दिस शो Now, the next song I am going to play for you is from the 1977 movie, Apnapan. It is composed by Lakshmikant Pyarelal and sung by Sulakshana Pandit and Kishore Kumar. Let us listen to this song.

लेके पहला पहला प्यार फॉर द सीआईडी वाज पिक्चराइज्ड ऑन शीला वैज एंड श्याम कपूर. शीला वैज मेड इट ऑलराइट इन द इंडस्ट्री बट श्याम कपूर वाज सीन इन ओनली वन मूवी. बाय द वे ही वाज गुरु दत्त वन ऑफ द असिस्टेंट्स. लेट्स लिसन टू द सॉन्ग.